आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM। अब सुनिए ओलिव का जबरदस्त है।

listening to Radio Olive 106.3 FM Jio Bindas. अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है, जबरदस्त है।

0: हैप्पीनेस फ्री में बट रही है, जितनी चाहो उतनी बटोर लो, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास।
1: की शॉपिंग का तरीका अब बदलने वाला है।
2: जीसीसी का पॉपुलर नेस्टो हाइपरमार्केट अब फाइनली आ गया है कतर में विद अनबिलीवेबल इनॉग्रल ऑफर्स।
1: और अब पार्किंग की भी नो टेंशन।
2: कतर्स फर्स्ट नेस्टो हाइपरमार्केट, ओल्ड पासपोर्ट ऑफिस, गराफा।
1: द वेट इज फाइनली ओवर।

0: सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM.
1: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर.
2: क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है कूल सॉन्ग.

आपकी एक छोटी सी मुस्कुराहट किसी का दिन बना सकती है. सो स्प्रेड द हैप्पीनेस, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस. रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी. जियो बिंदास.

0: खुद के कंधे पर हाथ रखकर कहा है कि क्या काम किया छोटे तूने। जनाब, खुद से हैप्पी रहोगे तभी तो हैप्पीनेस फैलाओगे, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास।
1: हाय, दिस इज अमिताभ बच्चन एंड यू आर लिसनिंग टू

गानों के साथ या हैप्पीनेस बढ़ रही है, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी। जियो बिंदास।

रेडियो ऑलिव योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी। अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है। जबरदस्त

0: हैप्पीनेस बांटोगे तभी तो बढ़ेगी,
1: क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस. रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी. जियो बिंदास.

Olive. 106.3 FM. Radio Olive. Gio,

गानों के साथ या हैप्पीनेस बढ़ रही है, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी जियो बिंदास।

0: गानों के साथ या हैप्पीनेस बट रही है, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास।
1: साहेबान, कदरदान, मेहरबान, दिल थाम के बैठिए, क्योंकि अब आपके सामने तशरीफ ला रही हैं आगरा।

0: हैप्पीनेस बांटोगे तभी तो बढ़ेगी,
1: क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटीजियस. रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी. जियो बिंदास.

0: हैप्पीनेस फ्री में बट रही है, जितनी चाहो उतनी बटोर लो, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास।
1: नमस्कार, मैं हूँ आर माधवन।
2: हाय, दिस इज बिपाशा बासु।
3: हाय, मैं राजकुमार राव।
4: हाय, मैं हूँ प्रियंका चोपड़ा।
5: हाय, दिस इज दिशा पांडे।
1: आप सुन रहे हैं रेडियो ऑलिव 106.3 FM।

0: आपकी एक छोटी सी मुस्कुराहट किसी का दिन बना सकती है. सो स्प्रेड द हैप्पीनेस, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस. रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी. जियो बिंदास.
1: शॉपिंग का तरीका अब बदलने वाला है.
2: जीसीसी का पॉपुलर नेस्टो हाइपरमार्केट अब फाइनली आ गया है कतर में विद अनबिलीवेबल इनॉग्रल ऑफर्स.
1: और अब पार्किंग की भी नो टेंशन.
2: कतर्स फर्स्ट नेस्टो हाइपरमार्केट, ओल्ड पासपोर्ट ऑफिस, गराफा.
1: द वेट इज फाइनली ओवर.

0: कभी खुद के कंधे पर हाथ रखकर कहा है कि क्या काम किया छोटे तूने? जनाब, खुद से हैप्पी रहोगे तभी तो हैप्पीनेस फैलाओगे, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास।
1: योर डेली सरप्राइज इज हियर। अपना हाला रिचार्ज करो और पाओ फ्री डेटा या मिनट्स का सरप्राइज। क्लेम करो ओरेडू ऐप पर। एक्सपीरियंस मोर विद ओरेडू।

गानों के साथ या हैप्पीनेस बट रही है, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी। जियो बिंदास।

0: हैप्पीनेस फ्री में बट रही है, जितनी चाहो उतनी बटोर लो, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास।
1: हाय, दिस इज एयर अमान। Listen to my songs on 106.3 Radio Olive. Jio Bindas.
2: Olive Suno Radio Network. Qatar's number one Asian radio network.

0: अरे इतना सारा डेटा और कॉल्स कैसे मिल गया रिचार्ज में?
1: ओरिडो के योर स्पेशल ऑफर से रिचार्ज करने पर।
0: योर स्पेशल ऑफर?
1: हाँ, ये एक हाला ऑफर है जो स्पेशली मेरे लिए बना है। ज्यादा वैल्यू और वही बेनिफिट्स जो मैं एक्चुअली यूज करता हूँ।
0: वाह, ये तो मेरे रेगुलर रिचार्ज से काफी बेटर लग रहा है।
1: बिल्कुल, मेरे नीड्स के हिसाब से परफेक्ट है।
0: ओरिडो का योर स्पेशल ऑफर, यानी वो ऑफर जो बनाए गए खास आपके लिए। अभी ओरिडो ऐप पर चेक करें या अपने नियरेस्ट रिटेलर पर जाएं। एक्सपीरियंस मोर विद ओरिडो।
2: आप सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 FM, जियो बिंदास।

0: कभी खुद के कंधे पर हाथ रखकर कहा है कि क्या काम किया छोटे तूने? जनाब, खुद से हैप्पी रहोगे तभी तो हैप्पीनेस फैलाओगे,
1: क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास।
2: की शॉपिंग का तरीका अब बदलने वाला है।
3: जीसीसी का पॉपुलर नेस्टो हाइपरमार्केट अब फाइनली आ गया है कतर में विद अनबिलीवेबल इनॉग्रल ऑफर्स,
2: और अब पार्किंग की भी नो टेंशन।
3: कतर्स फर्स्ट नेस्टो हाइपरमार्केट, ओल्ड पासपोर्ट ऑफिस, गराफा।
2: द वेट इज फाइनली ओवर, बी रेडी।

सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।

0: चले।
1: गानों के साथ या हैप्पीनेस बढ़ रही है क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी। जियो बिंदास।

0: हैप्पीनेस बांटोगे तभी तो बढ़ेगी,
1: क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास।
2: नमस्कार, मैं हूँ आर माधवना। आप सुन रहे हैं रेडियो ऑलिव 106.3 FM।

0: हैप्पीनेस फ्री में बट रही है, जितनी चाहो उतनी बटोर लो, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास।
1: अरे इतना सारा डेटा और कॉल्स कैसे मिल गया रिचार्ज में?
2: ओरिडो के योर स्पेशल ऑफर से रिचार्ज करने पर।
1: योर स्पेशल ऑफर?
2: हाँ, ये एक हाला ऑफर है जो स्पेशली मेरे लिए बना है। ज्यादा वैल्यू और वही बेनिफिट्स जो मैं एक्चुअली यूज करता हूँ।
1: वाह, ये तो मेरे रेगुलर रिचार्ज से काफी बेटर लग रहा है।
2: बिल्कुल, मेरे नीड्स के हिसाब से परफेक्ट है।
1: ओरिडो का योर स्पेशल ऑफर, यानी वो ऑफर जो बनाए गए खास आपके लिए। अभी ओरिडो ऐप पर चेक करें या अपने नियरेस्ट रिटेलर पर जाएं। एक्सपीरियंस मोर विद ओरिडो।

छोटी सी मुस्कुराहट किसी का दिन बना सकती है. सो स्प्रेड द हैप्पीनेस, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस. रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी. जियो बिंदास.

0: कभी खुद के कंधे पर हाथ रख कर कहा है कि क्या काम किया छोड़े तूने? जनाब, खुद से हैप्पी रहोगे तभी तो हैप्पीनेस फैलाओगे, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास।
1: हाय, मैं हूं विवेकानंद ओबेरॉय। You're listening to Radio Olive, Jio Bindas. I'm in number
2: one, Radio Olive. Olive Suno Radio Network, Qatar's number one Asian radio network.

0: गानों के साथ या हैप्पीनेस बढ़ रही है, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी। जियो बिंदास।
1: की शॉपिंग का तरीका अब बदलने वाला है।
2: GCC का पॉपुलर नेस्टो हाइपरमार्केट अब फाइनली आ गया है कतर में विद अनबिलीवेबल इनॉग्रल ऑफर्स।
1: और अब पार्किंग की भी नो टेंशन।
2: कतर्स फर्स्ट नेस्टो हाइपरमार्केट, ओल्ड पासपोर्ट ऑफिस, गराफा।
1: द वेट इज फाइनली ओवर।

रेडियो ऑलिव योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी। अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है।

हैप्पीनेस फ्री में बट रही है, जितनी चाहो उतनी बटोर लो, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी। जियो बिंदास।

आपकी एक छोटी सी मुस्कुराहट किसी का दिन बना सकती है. सो स्प्रेड द हैप्पीनेस, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस. रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी. जियो बिंदास.

0: कभी खुद के कंधे पर हाथ रखकर कहा है कि क्या काम किया छोटे तूने? जनाब, खुद से हैप्पी रहोगे तभी तो हैप्पीनेस फैलाओगे, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास।
1: हाय, मैं हूं सोहाली खान एंड यू आर लिस्टनिंग टू रेडियो ऑलिव, जियो बिंदास।
2: Olive Sonor Radio Network, Qatar's number one Asian radio network.

कानों के साथ या हैप्पीनेस बट रही है, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी। जियो बिंदास।

आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।

0: हैप्पीनेस बांटोगे तभी तो बढ़ेगी, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटीजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास।
1: अरे इतना सारा डेटा और कॉल्स कैसे मिल गया रिचार्ज में?
2: ओरिडो के योर स्पेशल ऑफर से रिचार्ज करने पर।
1: योर स्पेशल ऑफर?
2: हाँ, ये एक हाला ऑफर है जो स्पेशली मेरे लिए बना है। ज्यादा वैल्यू और वही बेनिफिट्स जो मैं एक्चुअली यूज करता हूँ।
1: वाह, ये तो मेरे रेगुलर रिचार्ज से काफी बेटर लग रहा है।
2: बिल्कुल, मेरे नीड्स के हिसाब से परफेक्ट है।
1: ओरिडो का योर स्पेशल ऑफर, यानी वो ऑफर जो बनाए गए खास आपके लिए। अभी ओरिडो ऐप पर चेक करें या अपने नियरेस्ट रिटेलर पर जाएं। एक्सपीरियंस मोर विद ओरिडो।

0: हैप्पीनेस बांटोगे तभी तो बढ़ेगी,
1: क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटीजियस. रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी. जियो बिंदास.

0: ஓ பாட்டு தான் தூடா.
1: Happiness free में बट रही है, जितनी चाहो उतनी बटोर लो, क्योंकि happiness is contagious. Radio Olive, your happiness frequency. Jio Bindas.
2: सुनो, आपकी शॉपिंग का तरीका अब बदलने वाला है.
3: GCC का पॉपुलर नेस्टो हाइपरमार्केट अब फाइनली आ गया है कतर में, विद अनबिलीवेबल इनॉग्रल ऑफर्स.
2: और अब पार्किंग की भी नो टेंशन.
3: कतर्स फर्स्ट नेस्टो हाइपरमार्केट, ओल्ड पासपोर्ट ऑफिस, गराफा.
2: द वेट इज फाइनली ओवर, बी रेडी टू शॉप.
4: हाय, मैं हूँ दिव्या दत्ता एंड यू आर लिसनिंग टू रेडियो ऑलिव जियो बिंदास.
5: Olive Sono Radio Network, Qatar's number one Asian radio network.

आपकी एक छोटी सी मुस्कुराहट किसी का दिन बना सकती है. सो स्प्रेड द हैप्पीनेस, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस. रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी. जियो बिंदास.

रेडियो ऑलिव योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी। अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है।

कभी खुद के कंधे पर हाथ रखकर कहा है कि क्या काम किया छोड़े तूने? जनाब, खुद से हैप्पी रहोगे तभी तो हैप्पीनेस फैलाओगे, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी। जियो बिंदास।

0: गानों के साथ या हैप्पीनेस बढ़ रही है क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस. रेडियो ऑलिव योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी. जियो बिंदास.
1: अरे इतना सारा डेटा और कॉल्स कैसे मिल गया रिचार्ज में?
2: ओरिडो के योर स्पेशल ऑफर से रिचार्ज करने पर.
1: योर स्पेशल ऑफर?
2: हाँ, ये एक हाला ऑफर है जो स्पेशली मेरे लिए बना है. ज्यादा वैल्यू और वही बेनिफिट्स जो मैं एक्चुअली यूज करता हूँ.
1: वाह, ये तो मेरे रेगुलर रिचार्ज से काफी बेटर लग रहा है.
2: बिल्कुल, मेरे नीड्स के हिसाब से परफेक्ट है.
1: ओरिडो का योर स्पेशल ऑफर, यानी वो ऑफर जो बनाए गए खास आपके लिए. अभी ओरिडो ऐप पर चेक करें या अपने नियरेस्ट रिटेलर पर जाएं. एक्सपीरियंस मोर विद ओरिडो.

0: हैप्पीनेस फ्री में बट रही है, जितनी चाहो उतनी बटोर लो, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास।
1: की शॉपिंग का तरीका अब बदलने वाला है।
2: जीसीसी का पॉपुलर नेस्टो हाइपरमार्केट अब फाइनली आ गया है कतर में विद अनबिलीवेबल इनॉग्रल ऑफर्स,
1: और अब पार्किंग की भी नो टेंशन।
2: कतर्स फर्स्ट नेस्टो हाइपरमार्केट, ओल्ड पासपोर्ट ऑफिस, गराफा।
1: द वेट इज फाइनली ओवर, बी रेडी टू शॉप।
3: ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਹਰਭਜਨ ਮਾਨ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਕਤਰ ਹਿੰਦੀ ਰੇਡੀਓ ਸਟੇਸ਼ਨ, ਰੇਡੀਓ ਆਲ ਆਫ 106.3 FM, ਜੀਓ ਬਿੰਦਾਸ।
4: ਆਲਿਵ ਸੁਨੋ ਰੇਡੀਓ ਨੈਟਵਰਕ, ਕਤਰਸ ਨੰਬਰ 1 ਏਸ਼ੀਅਨ ਰੇਡੀਓ ਨੈਟਵਰਕ।

0: आपकी एक छोटी सी मुस्कुराहट किसी का दिन बना सकती है. सो स्प्रेड द हैप्पीनेस, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस. रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी. जियो बिंदास.
1: रोहन कितनी बार बोला है खाना खाने से पहले हैंड वॉश करना है, कैसे समझाओ इस लड़के को.
2: सुबह शाम बस यही टेंशन. बच्चों को लेक्चर नहीं, हम देंगे फुल ऑन फन. बिकॉज रियादा मेडिकल सेंटर और ऑलिव सुनो रेडियो नेटवर्क लेकर आए हैं बैक टू स्कूल जूनियर केयर क्लब,
1: जहां बच्चे खेलेंगे रियल लाइफ गेम्स और सीखेंगे हेल्थ एंड हाइजीन की इम्पोर्टेंस एकदम मजेदार तरीके से.
2: तो इस 4th सितंबर को अपने 7 से 10 साल के लिटिल चैंपियंस को लेकर आओ रियादा मेडिकल सेंटर पर
1: सुबह 9 बजे एंड लेट देम प्ले लर्न एंड बिकम अल्टीमेट हेल्थ एंड हाइजीन सुपर हीरोज.
2: टू रजिस्टर व्हाट्सएप OR स्पेस आपका नाम 3311063 पर.
1: Brought to you by Riyadha Medical Center.
3: JCI Accredited Riyadha Medical Center. Har din aapki seva mein karyarat hai.
4: Visit Riyadha Medical Center on Searing Road, Doha.
1: Hygiene and wellness partner, Johnson's. 99.9% germ removal now with micellar technology. Listerine. 5x more clean.

0: फ्रेश सॉन्ग ऑफ द ईयर।
1: ये गाना
2: करती हैं निगाहें कि दिल को खबर ना हो, जख्म देती है ऐसा कि दर्द का असर ना हो। हमने समझा था इश्क की मोहब्बत को ही ख्याले दिल, लगता है डर बस इतना वो मेरा हम शक्ल ना।

0: कभी खुद के कंधे पर हाथ रखकर कहा है कि क्या काम किया छोड़े तूने? जनाब, खुद से हैप्पी रहोगे तभी तो हैप्पीनेस फैलाओगे, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास।
1: शॉपिंग लिस्ट बड़ी है तो सेविंग्स भी बिग होनी चाहिए, बिकॉज लुलु बिग 5 days डील्स आर हियर। 31st August तक ग्रैब बिग डील्स ऑन फ्रेश फूड्स, ग्रोसरीज, होम अप्लायंसेस, मोबाइल्स, लैपटॉप, टीवीज, फैशन और एवरीडे एसेंशियल्स, और ऑनलाइन शॉपिंग का बोनस भी 89 रियाल से ऊपर के ऑर्डर्स पर फ्री होम डिलीवरी। तो देर किस बात की, 5 days बिग डील्स बिग सेविंग्स। विजिट लुलु हाइपरमार्केट या शॉप ऑनलाइन एट luluhypermarket.com। लुलु बिग 5 days डील्स, मिस किया तो डील गई।
2: Fresh fish on the grill, slow cooked mandi, perfectly spiced prawns, and that special chutney. No noise, no drama. Just seafood done right. BBQ fish, crabs, prawns, crafted with patience, served with pride. Dana Dal Bahar, the ultimate Qatari adventure. Souq Waqif, Alkhol.

0: सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM
1: बिंदास awesome. रेडियो ओलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर
2: क्या बात है सर क्या पर ये बात है
3: कूल सॉन्ग आह को चाहे एक उम्र असर होते तक

0: हफ्ते तक
1: गानों के साथ या हैप्पीनेस बढ़ रही है क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस. रेडियो ऑलिव योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी. जियो बिंदास.

0: हैप्पीनेस बांटोगे तभी तो बढ़ेगी, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास।
1: नमस्कार, मैं हूँ गुलराज सिंह।
2: गुलराज सिंह
1: और आप सुन रहे हैं रेडियो ऑलिव 106.3
2: जियो बिंदास।
3: ऑलिव सुनो रेडियो नेटवर्क, कतर्स नंबर वन एशियन रेडियो नेटवर्क।

रेडियो ऑलिव योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी। अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है।

0: हैप्पीनेस फ्री में बट रही है, जितनी चाहो उतनी बटोर लो, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास।
1: शॉपिंग लिस्ट बड़ी है तो सेविंग्स भी बिग होनी चाहिए, बिकॉज लुलु बिग 5 days डील्स आर हियर। 31st August तक ग्रैब बिग डील्स ऑन फ्रेश फूड्स, ग्रोसरीज, होम अप्लायंसेस, मोबाइल्स, लैपटॉप, टीवीज, फैशन और एवरीडे एसेंशियल्स, और ऑनलाइन शॉपिंग का बोनस भी 89 रियाल से ऊपर के ऑर्डर्स पर फ्री होम डिलीवरी। तो देर किस बात की, 5 days बिग डील्स बिग सेविंग्स। विजिट लुलु हाइपरमार्केट या शॉप ऑनलाइन एट luluhypermarket.com। लुलु बिग 5 days डील्स, मिस किया तो डील गई। रोहन कितनी बार बोला है खाना खाने से पहले हैंड वॉश करना है, कैसे समझाओ इस लड़के को।
2: सुबह शाम बस यही टेंशन, बच्चों को लेक्चर नहीं, हम देंगे फुल ऑन फन। बिकॉज रियादा मेडिकल सेंटर और ऑलिव सुनो रेडियो नेटवर्क लेकर आए हैं बैक टू स्कूल जूनियर केयर क्लब,
1: जहां बच्चे खेलेंगे रियल लाइफ गेम्स और सीखेंगे हेल्थ एंड हाइजीन की इम्पोर्टेंस एकदम मजेदार तरीके से।
2: तो इस 4th सितंबर को अपने 7 से 10 साल के लिटिल चैंपियंस को लेकर आओ रियादा मेडिकल सेंटर पर
1: सुबह 9 बजे, एंड लेट देम प्ले, लर्न एंड बिकम अल्टीमेट हेल्थ एंड हाइजीन सुपर हीरोज।
2: टू रजिस्टर व्हाट्सएप OR स्पेस आपका नाम 3311063 पर।
1: Brought to you by Riyada Medical Center.
3: JCI Accredited Riyada Medical Center. Har din aapki seva mein karyarat hai.
4: Visit Riyada Medical Center on Searing Road, Doha.
1: Hygiene and wellness partner, Johnson's. 99.9% germ removal now with micellar technology. Listerine. 5x more clean.

आपकी एक छोटी सी मुस्कुराहट किसी का दिन बना सकती है. सो स्प्रेड द हैप्पीनेस, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस. रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी. जियो बिंदास.

0: कभी खुद के कंधे पर हाथ रखकर कहा है कि क्या काम किया छोड़े तूने? जनाब, खुद से हैप्पी रहोगे तभी तो हैप्पीनेस फैलाओगे, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास।
1: अरे, इतना सारा डेटा और कॉल्स कैसे मिल गया रिचार्ज में?
2: ओरिडो के योर स्पेशल ऑफर से रिचार्ज करने पर।
1: योर स्पेशल ऑफर?
2: हाँ, ये एक हाला ऑफर है जो स्पेशली मेरे लिए बना है। ज्यादा वैल्यू और वही बेनिफिट्स जो मैं एक्चुअली यूज करता हूँ।
1: वाह, ये तो मेरे रेगुलर रिचार्ज से काफी बेटर लग रहा है।
2: बिल्कुल, मेरे नीड्स के हिसाब से परफेक्ट है।
1: ओरिडो का योर स्पेशल ऑफर, यानी वो ऑफर जो बनाए गए खास आपके लिए। अभी ओरिडो ऐप पर चेक करें या अपने नियरेस्ट रिटेलर पर जाएं। एक्सपीरियंस मोर विद ओरिडो।
3: मैं हूं अनिल कपूर, वीडियो

0: गानों के साथ या हैप्पीनेस बढ़ रही है, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी। जियो बिंदास।
1: Fresh fish on the grill, slow cooked mandi, perfectly spiced prawns, and that special chutney. No noise, no drama. Just seafood done right. BBQ fish, crabs, prawns, crafted with patience. Served with pride. Danadal Bahar, the ultimate Qatari adventure. Souq Waqif, Alkhor.

देखिए इमोशंस की बात तो आजकल हर किसी से की जा सकती है, लेकिन टेक्नोलॉजी की बात मस्ती और मजे के तड़के के साथ सिर्फ आपकी कशिश के साथ की जा सकती है। वेलकम जी 106.3 रेडियो ऑलिव पर, मैं हूँ आपकी कशिश अंशु, आपके लिए ले आई हूँ द टेक शो, जहाँ पर टेक्नोलॉजी की बात होती है मस्ती के मजे के तड़के के साथ। अब देखिए यार, मेरी ऐसी आवाज जो है वो हो रही है क्योंकि मैंने अपना ख्याल नहीं रखा इस बदलते हुए मौसम में, लेकिन आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिए वरना मेरे जैसी आवाज जो है वो हो जाएगी। पिछले एक हफ्ते से मैं ऐसी आवाज के साथ जो है स्टक हूँ, आप सबकी दुआएं जो है बस वो चाहिए, सब ठीक हो जाएगा। सो थोड़ी से पेशेंस के साथ इस आवाज को बेयर करते हुए हम आगे बढ़ेंगे, एंड आज बहुत सारे अमेजिंग फैक्ट्स और न्यूज आपके लिए मैं लेकर आई हूं। सो बस चिपके रहिए अपने रेडियो सेट से, एंड कहते रहिए जियो बिंदास। लौट के आती हूं मैं इन गानों के उस पार।

0: हैप्पीनेस फ्री में बट रही है, जितनी चाहो उतनी बटोर लो, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास।
1: की शॉपिंग का तरीका अब बदलने वाला है।
2: GCC का पॉपुलर नेस्टो हाइपरमार्केट अब फाइनली आ गया है कतर में विद अनबिलीवेबल इनॉग्रल ऑफर्स।
1: और अब पार्किंग की भी नो टेंशन।
2: कतर्स फर्स्ट नेस्टो हाइपरमार्केट, ओल्ड पासपोर्ट ऑफिस, गराफा।
1: द वेट इज फाइनली ओवर, बी रेडी टू शॉप।
3: This is Amaira Dastoor on Radio Olive 106.3 FM, Jio Bindas.
4: ECAX

कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपने कोई जो है सब्सक्रिप्शन लेके रखी हो लेकिन बहुत लंबा टाइम हो गया एंड आप उसे कैंसिल करना भूल गए हो, आप उसे यूज ही नहीं करते एंड आपको ऐसी चीजों को जो है हैंडल करने के लिए एक असिस्टेंट चाहिए। अब आप और मैं, हम सब तो एक असिस्टेंट अफोर्ड नहीं कर सकते, लेकिन AI ये काम जरूर कर सकता है हमारे लिए। वेलकम जी 106.3 रेडियो ऑलिव पर, मैं हूँ आपकी कशिश और आपके लिए द टेक शो लेकर आ गई हूँ जहाँ पर टेक्नोलॉजी की बात होती है लेकिन मस्ती के मजे के तड़के के साथ। अब इंस्टिंक्ट स्टार्टअप की जो है धूम मची हुई है मार्केट में, ये जो है एक वायरल AI ऐप है जिसे जो है एक बहुत ही अच्छी वैल्यूएशन मिली है मार्केट में। ये ऐप जो है आपकी डेली टास्क जैसे रोड ट्रिप्स या फिर टिकट्स बुक करना या पुरानी सब्सक्रिप्शंस को कैंसिल करना ये सब ना खुद ही हैंडल कर लेता है, यानी इसका इतना खुद का दिमाग है कि ये हैंडल कर लेता है। अब मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि इसका दिमाग अगर मेरे दिमाग से मेरी वाइब से मैच नहीं किया तो ये तो मेरी इंपॉर्टेंट चीज़ों को जो है अपने आप डिलीट कर देगा। पता नहीं ये AI जो है किस तरीके से काम करेगा, लेकिन हाँ एक काम AI बहुत अच्छी तरीके से कर रहा है और वो है हमें आलसी बनाने का। फिलहाल आलस जो है वो दूर छोड़ते हुए वॉल्यूम बढ़ाइए और अमेजिंग वाले गाने आपकी कशिश के साथ इंजॉय करते रहिए। स्टे ट्यून्ड जियो फिंदा।

0: आपकी एक छोटी सी मुस्कुराहट किसी का दिन बना सकती है. सो स्प्रेड द हैप्पीनेस,
1: क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस. रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी. जियो बिंदास.
2: शॉपिंग लिस्ट बड़ी है तो सेविंग्स भी बिग होनी चाहिए, बिकॉज लुलू बिग फाइव डेज डील्स आर हियर. 31st August तक ग्रैब बिग डील्स ऑन

दो तीन चीजें हैं जिनके बिना अपनी लाइफ को अब इमेजिन आप नहीं कर सकते, ऑक्सीजन, खाना, घर, आपकी फैमिली, और मुझे ऐसा लगता है हमारे पेरेंट्स के लिए एंड या फिर जो कतर में बहुत ज़्यादा यू नो कनेक्टिविटी वाला काम करते हैं उनके लिए व्हाट्सएप भी एक पार्ट है इस लिस्ट का। वेलकम जी 106.3 रेडियो ऑलिव पर, मैं हूँ आपकी कसूर अंशु, आपके लिए लेकर आ गई हूँ द टेक शो, जहाँ पर हम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं मस्ती के मजे के तड़के के साथ। अब मैं सीरियसली एक बात कन्फेस करूँ, मैं लाइफ मस्त है शो बोलने वाली थी, सो अगर आप अभी मुझे सुन रहे हैं और आपको मेरा शो अच्छा लग रहा है तो आप लाइफ मस्त है शो मुझे जो है मेरे साथ इंजॉय कर सकते हैं हर रोज सुबह 10 बजे से लेकर 1 बजे तक, एंड वीकेंड्स पे मैं आपके लिए द टेक शो लेकर आती हूँ। सो मैं बात कर रही थी व्हाट्सएप की। सो अब व्हाट्सएप ने एक नया फीचर जो है वो रोल आउट किया है, मतलब फीचर ऐसे आपको यूज़ नहीं करना है बट आपकी सिक्योरिटी को ये अब इंक्रीज कर देगा। स्ट्रॉन्गर अकाउंट वेरिफिकेशन जो है अब शुरू हो चुका है, जिससे अब स्पैम मैसेजेस आपके पास नहीं आएंगे एंड ये जो नॉर्मल कॉल आ जाते हैं ना आपके पास वीडियो कॉल अननोन नंबर से, वो भी अब नहीं आएंगे। लेकिन कहीं ना मुझे थोड़ा सा ये जो इनका वेरिफिकेशन वाली चीज़ है ये काफ़ी अनॉय कर रहा है, बिकॉज अचानक से व्हाट्सएप पे जो है किसी से बात करते हुए एक पॉपअप आ जाता है जहां पे आपको अपना जो कोड है वो डालना पड़ता है। ये थोड़ा सा अनोइंग हो रहा है लेकिन सिक्योरिटी जो है वो इंक्रीज हो गई है, सो कूडोज फॉर दैट व्हाट्सएप। फिलहाल अमेजिंग वाले गाने आ रहे हैं आपके रेडियो सेट्स पर, इन्हें एंजॉय कीजिए। मैं जरा गर्म पानी पी के आती हूँ क्योंकि मेरी आवाज मुझे ऐसा लग रहा है कि जस्टिस नहीं कर पा रही है मेरे कॉन्टेंट के साथ। सो स्टे ट्यून्ड रहिए जियो बिंदास।

कभी खुद के कंधे पर हाथ रखकर कहा है कि क्या काम किया छोटे तूने? जनाब, खुद से हैप्पी रहोगे तभी तो हैप्पीनेस फैलाओगे, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास।

बोल बोल रानी, क्या चाहिए? बंगला चाहिए या कैश चाहिए? आईफोन चाहिए, मुझे आईफोन चाहिए। हाँ जी, एक गाना है उसका पैरोडी बनाया है मैंने, बिकॉज आईफोन ही है जो दिल चाहता है। मतलब मेरा अभी आईफोन 13 मैं यूज़ कर रही हूँ एंड मैं हर साल सोचती हूँ कि यार जो नया आईफोन लॉन्च होने वाला है ना, अब तो वही ले लूँगी। और अभी भी मैं यही सोच रही हूँ कि सितंबर तक जो है सेविंग कर लेती हूँ एंड एक नया आईफोन तो देखो ले ही लूंगी। वेलकम जी 106.3 रेडियो वाले पर, मैं हूँ आपकी कशिश और द टेक शो आपके लिए लेकर आ गई हूँ, जहाँ पर टेक्नोलॉजी की बातचीत होती है मस्ती के मजे के तड़के के साथ। अब देखिए, एप्पल का इवेंट जो है इस सितंबर 9th को जो है पक्का हो चुका है। कल भी मैंने अपने शो लाइफ मस्त है में इसी की बात करी थी एंड अब ऑफिशियली जो है शेड्यूल कर दिया गया है, एक बिग लॉन्च जो है वो एंटिसिपेट किया जा रहा है। यहाँ पर AI पावर्ड आईफोन जो है वो लॉन्च हो सकते हैं और अपडेटेड एक्सेसरीज जो है वो भी लॉन्च होते हुए हमें दिख सकती है। सो जितने भी एप्पल पगलूज हैं, यानी जो भी एप्पल का हर डिवाइस उनको लॉन्च होते ही खरीदना होता है, उन लोगों के लिए एक अच्छी खबर जो है ये होने वाली है। सो अगर आप भी उनमें से एक है तो 3311063 पर मुझे मैसेज करके बता दो एंड बाकी अमेजिंग वाले गाने आ रहे हैं आपके रेडियो सेट पर, तो वॉल्यूम बढ़ाकर एंजॉय करो आपकी कशिश के साथ और कहते रहो जियो बिंदास।

0: गानों के साथ या हैप्पीनेस बढ़ रही है,
1: क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी। जियो बिंदास।
2: रोहन कितनी बार बोला है खाना खाने से पहले हैंड वॉश करना है, कैसे समझाऊं इस लड़के को।
3: सुबह शाम बस यही टेंशन। बच्चों को लेक्चर नहीं, हम देंगे फुल ऑन फन। बिकॉज रियादा मेडिकल सेंटर और ऑलिव सुनो रेडियो नेटवर्क लेकर आए हैं बैक टू स्कूल जूनियर केयर क्लब,
2: जहां बच्चे खेलेंगे रियल लाइफ गेम्स और सीखेंगे हेल्थ एंड हाइजीन की इम्पोर्टेंस एकदम मजेदार तरीके से।
3: तो इस 4th सितंबर को अपने 7 से 10 साल के लिटिल चैंपियंस को लेकर आओ रियादा मेडिकल सेंटर पर
2: सुबह 9 बजे एंड लेट देम प्ले लर्न एंड बिकम अल्टीमेट हेल्थ एंड हाइजीन सुपर हीरोज।
3: टू रजिस्टर व्हाट्सएप OR स्पेस आपका नाम 3311063 पर।
2: Brought to you by Riyadhar Medical Center.
4: JCI Accredited Riyadhar Medical Center. Har din aapki seva mein karyarat hai.
5: Visit Riyadhar Medical Center on Searing Road, Doha.
2: Hygiene and wellness partner, Johnson's. 99.9% germ removal now with micellar technology. Listerine. 5x more clean.

कल मैं ना ओम शांति ओम देख रही थी, जहाँ पर वो वाला सीन आता है जहाँ पर शाहरुख खान के हाथ में दीपिका का दुपट्टा जो है वो फंस जाता है, एंड मैं ये वंडर कर रही थी कि हमारे टाइम पर ऐसा हो ही नहीं पाता, क्योंकि लोग जो है वो अब स्मार्ट वॉच पहनते हैं, एंड स्मार्ट वॉच में मुझे नहीं लगता कि दुपट्टा फंसने की जो है बिल्कुल गुंजाइश है। वेलकम जी 106.3 रेडियो ऑलिव पर, मैं हूँ आपकी कशिश, एंड द टेक शो आपके लिए लेकर आ गई हूँ, जहाँ पर मस्ती के मजे के तड़के के साथ हम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, एंड अपनी ख़राब आवाज़ के साथ मैं अच्छी अच्छी बातें आपको बताने के लिए आ चुकी हूँ, क्योंकि जुकाम हो गया है ना मुझे, तो मैं चाह कर भी अच्छी आवाज़ में बात नहीं कर पा रही हूँ फिलहाल। अब मैं आपको अगर बताऊँ कि स्मार्ट वॉच का जो ट्रेंड है वो धीरे धीरे लो जा रहा है, मतलब लोग क्यों पहनते थे स्मार्ट वॉच, ताकि उन्हें नोटिफिकेशन मिले, एंड बेसिकली एक सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न था उनकी हेल्थ को ट्रैक करने का, लेकिन अब स्मार्ट रिंग्स जो है वो मेन स्ट्रीम में एंट्री मार चुकी है, जहाँ पे कॉम्पैक्ट हेल्दी वेरेबल जो है रिंग्स आप ले सकते हैं, जो आपके ब्लड प्रेशर को ट्रैक करते हैं, एंड स्क्रीन फ्री है, तो बेसिकली आपका स्क्रीन टाइम और एक जगह नहीं बढ़ जाता है, एंड कस्टमर्स जो है, सो कंज्यूमर्स जो हैं वो काफ़ी पसंद कर रहे हैं, क्योंकि कॉम्पैक्ट है, इतना बड़ा बल्कि सा जो है घड़ी आपको हमेशा नहीं पहनना, एंड आपकी किसी भी आउटफिट के साथ एक रिंग तो देखो चली ही जाती है, और इसे सब यूज़ कर सकते हैं, चाहे आपकी फैमिली में कोई भी, और इतनी बड़ी कोई चीज़ नहीं है जिसे आपको हमेशा संभाल के रखना पड़े। सो फिटनेस रिंग या स्मार्ट रिंग्स जो है वो अब इन ट्रेंड हो गई है, आप यूज़ करोगे या नहीं करोगे बताओ मुझे 3311063 पर। फिलहाल एक अमेजिंग वाला गाना आ रहा है आपके रेडियो सेट्स पर, वॉल्यूम बढ़ाकर एंजॉय करो आपकी कशिश के साथ, और कहते रहो जियो बिंदास।

0: हैप्पीनेस बांटोगे तभी तो बढ़ेगी, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास।
1: की शॉपिंग का तरीका अब बदलने वाला है।
2: जीसीसी का पॉपुलर नेस्टो हाइपरमार्केट अब फाइनली आ गया है कतर में विद अनबिलीवेबल इनॉग्रल ऑफर्स।
1: और अब पार्किंग की भी नो टेंशन।
2: कतर्स फर्स्ट नेस्टो हाइपरमार्केट, ओल्ड पासपोर्ट ऑफिस, गराफा।
1: द वेट इज फाइनली ओवर, बी रेडी टू शॉप।

मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि मेरी मम्मी से मैं बहुत अफेक्ट हो रही हूँ या मैं अपनी मम्मी के जैसी होती जा रही हूँ, क्योंकि मैं एआई को हर चीज़ का दोष दे देती हूँ. हम लेजी क्यों हो रहे हैं? एआई की वजह से हो रहे हैं. हम काम क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि एआई आ चुका है. हम क्रिएटिविटी क्यों नहीं दिखा रहे हैं? बिकॉज हम सारे सवालों के जवाब जो है वो एआई से ले रहे हैं. लेकिन एआई इतना बुरा भी नहीं है, बिल्कुल बुरा नहीं है अगर मैं सच में बात करूं तो. हम बस उसे यूज़ गलत तरीके से कर रहे हैं. वेलकम जी 106.3 रेडियो ऑलिव पर. मैं हूं आपकी कशिश एंड शो आपके लिए लेकर आ गई हूं द टेक शो, जहां पर टेक्नोलॉजी की बात होती है मस्ती के मज़े के तड़के के साथ. अब देखिए, एआई का इस्तेमाल कुछ अच्छी जगहों पर भी हो रहा है एंड ऐसे ही अगर हम करेंगे तो एआई तो देखो बहुत यूज़फुल रहने वाली है. सो एआई ब्रेन सर्जरी जो है वो सक्सेसफुल हो गई है. सो वर्ल्ड की फर्स्ट जो है एआई से की ब्रेन सर्जरी जो है वो पूरी तरीके से सक्सेसफुल रही है. ब्रेन ट्यूमर जो है वो निकाला गया है एआई से एंड डॉक्टर्स ने उसे यूज़ किया था एडवांस एआई का एंड सेफली जो है हेल्थ केयर के साथ एआई को अगर एमैल्गमेट किया जाए यानी मिलाया जाए तो बहुत सारे अच्छे रिजल्ट्स जो है वो मिल सकते हैं. सो एआई की यूसेज में एक ये बहुत बड़ा माइलस्टोन होने वाला है कि अब हेल्थ केयर में एआई जो है वो काफ़ी हेल्प करेगा. वरना बीच में ये बात काफ़ी आ गई थी कि आप हेल्थ टिप्स जो एआई से लेते हैं वो थोड़ा कम करें, डॉक्टर का प्रिस्क्राइब चीज़ें जो है ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको अभी भी ध्यान रखना है. लेकिन एआई अगर हम हेल्थ केयर के साथ मिला दें यानी डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के साथ अगर एआई मैच हो जाए, मिल जाए, हेल्प करे, तो हम तो दुनिया जीत सकते हैं यार. मैं हूँ आपकी कशिश और आपके लिए अमेजिंग वाले गाने आ रहे हैं आपके रेडियो सेट्स पर. वॉल्यूम बढ़ाकर इंजॉय करो और स्टे ट्यून्ड रहो. कहते रहो जियो बिंदास.

0: हैप्पीनेस बांटोगे तभी तो बढ़ेगी,
1: क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास।
2: शॉपिंग लिस्ट बड़ी है तो सेविंग्स भी बिग होनी चाहिए, बिकॉज लुलू बिग 5 days डील्स आर हियर। 31st August तक ग्रैब बिग डील्स ऑन फ्रेश फूड्स, ग्रोसरीज, होम अप्लायंसेस, मोबाइल्स, लैपटॉप, टीवीज, फैशन और एवरीडे एसेंशियल्स, और ऑनलाइन शॉपिंग का बोनस भी 89 रियाल से ऊपर के ऑर्डर्स पर फ्री होम डिलीवरी। तो देर किस बात की, 5 days बिग डील्स बिग सेविंग्स। विजिट लुलू हाइपरमार्केट या शॉप ऑनलाइन एट luluhypermarket.com। लुलू बिग 5 days डील्स, मिस किया तो डील गई।
3: अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है।

भाई साहब, जैसे जैसे हमारा अटेंशन स्पैन कम होता जा रहा है, वैसे वैसे ये जो कंपनीज हैं, ये सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, ये भी अपना व्यू काउंट जो है वो चेंज करते जा रहे हैं। इन्हें पता है कि हम जो है 3 सेकंड में रील, शॉर्ट या वीडियो जो है वो स्किप कर देंगे, तो उसे जो है अब व्यू में कंसिडर करने लग गए हैं। हाँ जी, वेलकम जी, 106.3 रेडियो एलएफ पर मैं हूँ आपकी कशिश, द टेक शो आपके लिए लेकर आ गई हूँ, जहाँ पर मस्ती के मजे के तड़के के साथ हम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं। अब देखिए यार, पहले ना YouTube पे होता था कि आपने अगर आधी वीडियो देखी है या 30 सेकंड कोई वीडियो देखी है तो उसके बाद उसका व्यू काउंट होता था, लेकिन अब इंस्टेंटली, यानी आपने वीडियो देखनी शुरू करी और विद इन सेकेंड्स जो है आपका व्यू काउंट हो जाएगा, यानी 1 मिलियन व्यू करना, 10 मिलियन व्यूज जो है वो क्रॉस करना वीडियोज़ के लिए अब कोई बड़ी बात नहीं रहने वाली है। सो क्रिएटर्स के लिए अच्छी बात है, एंड मुझे लगता है अब कॉम्पिटिशन जो है और ज़्यादा बढ़ने वाला है। अब 1 मिलियन, 10 मिलियन, ये जो व्यूज लोग बताते हैं ना, ये कुछ ज्यादा बड़ी बात नहीं रहेगी, अब कंपटीशन होगा और ज्यादा बड़े नंबर्स का। सो स्टे ट्यून्ड रहिए ऐसी बहुत सारी बातों के लिए ऑन 106.3 रेडियो ऑलिव। मैं हूं आपकी कशिश, अमेजिंग गाने आ रहे हैं आपके लिए, वॉल्यूम बढ़ाकर एंजॉय कीजिए और कहते रहिए जियो बिंदास।

सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM. Radio Olive Park. Fresh song of the hour.

0: हैप्पीनेस फ्री में बट रही है, जितनी चाहो उतनी बटोर लो, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास।
1: अरे इतना सारा डेटा और कॉल्स कैसे मिल गया रिचार्ज में?
2: ओरिडो के योर स्पेशल ऑफर से रिचार्ज करने पर।
1: योर स्पेशल ऑफर?
2: हाँ, ये एक हाला ऑफर है जो स्पेशली मेरे लिए बना है। ज्यादा वैल्यू और वही बेनिफिट्स जो मैं एक्चुअली यूज करता हूँ।
1: वाह, ये तो मेरे रेगुलर रिचार्ज से काफी बेटर लग रहा है।
2: बिल्कुल, मेरे नीड्स के हिसाब से परफेक्ट है।
1: ओरिडो का योर स्पेशल ऑफर, यानी वो ऑफर जो बनाए गए खास आपके लिए। अभी ओरिडो ऐप पर चेक करें या अपने नियरेस्ट रिटेलर पर जाएं। एक्सपीरियंस मोर विद ओरिडो।
3: रोहन कितनी बार बोला है खाना खाने से पहले हैंड वॉश करना है, कैसे समझाऊं इस लड़के को।
4: सुबह शाम बस यही टेंशन। बच्चों को लेक्चर नहीं, हम देंगे फुल ऑन फन। बिकॉज रियादा मेडिकल सेंटर और ऑलिव सुनो रेडियो नेटवर्क लेकर आए हैं बैक टू स्कूल जूनियर केयर क्लब,
3: जहां बच्चे खेलेंगे रियल लाइफ गेम्स और सीखेंगे हेल्थ एंड हाइजीन की इम्पोर्टेंस एकदम मजेदार तरीके से।
4: तो इस 4 सितंबर को अपने 7 से 10 साल के लिटिल चैंपियंस को लेकर आओ रियादा मेडिकल सेंटर पर
3: सुबह 9 बजे एंड लेट देम प्ले लर्न एंड बिकम अल्टीमेट हेल्थ एंड हाइजीन सुपर हीरोज।
4: टू रजिस्टर व्हाट्सएप OR स्पेस आपका नाम 3311063 पर।
3: Brought to you by Riyadha Medical Center.
5: JCI Accredited Riyadha Medical Center. Har din aapki seva mein karyarat hai.
6: Visit Riyadha Medical Center on Searing Road, Doha.
3: Hygiene and wellness partner, Johnson's. 99.9% germ removal now with micellar technology. Listerine. 5x more cleaning power when added to brushing.
7: G-E-C-A.

तो जी आप लोगों के साथ वीकेंड बनाकर बहुत ज्यादा मजा आया, लेकिन अब मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा। अभी जाऊंगी तभी तो कल लौट कर आऊंगी सुबह 10 बजे। एक्चुअली कल 10 बजे नहीं आऊंगी, मैं कल मैं आऊंगी शाम को आपकी यू नो इवनिंग्स को अब अमेजिंग बनाने के लिए। हाँ जी, ये सरप्राइज जो है ये कल तक सरप्राइज ही रहने दो। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखो, खाना खाते रहना, पानी पीते रहना, गाड़ी धीरे धीरे हौले हौले चलाना, एंड मुझे मिस करते रहना। रेडियो ऑलिव के इंस्टाग्राम हैंडल पर जाकर और सभी सोशल मीडिया हैंडल्स पर जाकर आप हमें फॉलो कर सकते हैं, हमारी सभी एक्टिविटीज़ पे अपनी पैन नज़र जो है वो रख सकते हैं। बहुत अमेजिंग कंटेंट जो है वो हम पोस्ट करते हैं, तो एक बार जाइए, फॉलो बटन दबाइए, एंड अगर आपको मैसेज करने का मन करे तो आप वहाँ मैसेज भी कर सकते हैं। 3311063 हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर तो आप हमेशा हमसे कनेक्टेड रह ही सकते हैं। तो फिलहाल मैं चलती हूँ, टाटा बाय बाय आपको कहती हूँ, मुलाकात होगी अब कल। स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास, हैप्पी वीकेंड।

0: आपकी एक छोटी सी मुस्कुराहट किसी का दिन बना सकती है. सो स्प्रेड द हैप्पीनेस, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस. रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी. जियो बिंदास.
1: योर डेली सरप्राइज इज हियर. अपना हाला रिचार्ज करो और पाओ फ्री डेटा या मिनट्स का सरप्राइज. क्लेम करो ओरेडू ऐप पर. एक्सपीरियंस मोर विद ओरेडू.

कुछ नहीं। गुड इवनिंग कतर, और सबसे पहले हैप्पी रक्षाबंधन। यू आर लिसनिंग रेडियो ऑल ओवर 106.3 एफएम। दिस इज मी मुस्कान विद यू, और शो का नाम है हैप्पी वीकेंड्स। सो आज राखी है, लेकिन आज मैं आपसे वो टिपिकल डायलॉग नहीं बोलूंगी कि भाई बहन का रिश्ता दुनिया का सबसे स्पेशल रिश्ता होता है। आज कुछ और बात करते हैं, क्योंकि कतर में रहने वाले बहुत सारे लोगों के लिए राखी का मतलब घर से दूर राखी। भाई इंडिया में है, बहन कतर में है, या फिर बहन इंडिया में है और भाई और किसी दूसरी कंट्री में। सो कल तक जिसके साथ एक ही घर में रिमोट के लिए फाइट होती थी, आज उसी के लिए वीडियो कॉल का वेट करते हो। और फनी बात तो पता है क्या है कि बचपन में हम कहते थे कि मुझे मेरा भाई चाहिए ही नहीं, और बड़े होके यार बस एक बार घर आ जा, और यही हम इंतज़ार करते रह जाते हैं। सो आज एक काम कीजिए, अपने सिबलिंग को सिर्फ राखी विश मत कीजिए, एक पुरानी चाइल्डहुड मेमोरी भेजिए और मुझे बताइए कि आपके सिबलिंग की कौन सी इरिटेटिंग हैबिट जो आपको सीक्रेटली आप उसे मिस करते हो, या आपको लगता है कि यार साथ रहने की बात ही अलग थी। बाय द वे, यू आर लिसनिंग रेडियो ऑल ओवर 106.3 एफएम। बात करेंगे आज पूरे कतर की, क्या क्या चल रहा है यहाँ पर, वीकेंड कैसा हम लोग स्पेंड कर रहे हैं। लेकिन आप कहीं मत जाइए, सुनते रहिए रेडियो ऑल ओवर, नंबर सेम 3311063। स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास। She likes to drop it low, man.

0: खुद के कंधे पर हाथ रखकर कहा है कि क्या काम किया छोड़े तूने जनाब, खुद से हैप्पी रहोगे तभी तो हैप्पीनेस फैलाओगे, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास।
1: की शॉपिंग का तरीका अब बदलने वाला है।
2: जीसीसी का पॉपुलर नेस्टो हाइपरमार्केट अब फाइनली आ गया है कतर में विद अनबिलीवेबल इनॉग्रल ऑफर्स,
1: और अब पार्किंग की भी नो टेंशन।
2: कतर्स फर्स्ट नेस्टो हाइपरमार्केट, ओल्ड पासपोर्ट ऑफिस, गराफा।
1: द वेट इज फाइनली ओवर। बी रेडी।

क्यों थक रहे हो?

0: So, आज का फ्राइडे ना थोड़ा सा मैजिकल है. कल रात को थर्सडे को बहुत सारे लोग यू नो लेट तक बाहर रहते हैं, सेलिब्रेट करते हैं अपना वीकेंड. और अगर आप भी उन्हीं में से एक हैं और सुबह सुबह आपने आसमान देखा है तो आपने लूनार इक्लिप्स जो है वो एक्सपीरियंस किया होगा. तो हम इक्लिप्स का जो अगर मैं फेज है तो बताऊँ आपको, सुबह 4:23 AM से स्टार्ट होके 4:57 पर मैक्सिमम फेज था और अराउंड 5:11 तक खत्म हो गया था. लेकिन ये कोई बॉलीवुड वाला ड्रामेटिक चांद लाल वाला सीन नहीं था. यहाँ पर बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें हैं जो लोग एक्सपीरियंस करते हैं और स्पेशली इस टाइम पर लोग उठ के यू नो देखने के लिए डिफरेंट जगहों पर जा रहे थे. मतलब मून अर्थ की आउटर शैडो से गुजरता है, इसीलिए चेंज जो है वो काफ़ी सटल होता है. लेकिन मुझे ना एस्ट्रोनॉमी से ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता है वो फीलिंग सुबह 4 बजे वाला. पूरा शहर ऑलमोस्ट यू नो सिर्फ इसीलिए जाग रहा था और बाकी कुछ लोग वीकेंड के लिए, और आप बालकनी में खड़े होकर चांद देख रहे हो. कितनी अजीब सी ब्यूटीफुल सी बात है ना. हमारी डेली लाइफ में इतनी नोटिफिकेशंस हैं लेकिन कभी कभी नेचर जो है बस एक नोटिफिकेशन भेजता है कि आप आसमान देखिए और बताइए कि किसने सबसे ज़्यादा इन्जॉय किया. यू आर लिसनिंग रेडियो ऑल 106.3 FM. मैं हूँ मुस्कान और शो का नाम है हैप्पी वीकेंड. सो किसने इक्लिप्स देखा और किसने अलार्म बंद करके बोला कि यार बाद में कभी देखेंगे. सुन रहे हैं आप रेडियो ऑलिव, मैं हूँ मुस्कान. स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास.
1: जब से तुम्हें मैंने देखा सनम

0: गानों के साथ या हैप्पीनेस बढ़ रही है क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस. रेडियो ऑलिव योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी. जियो बिंदास.
1: शॉपिंग लिस्ट बड़ी है तो सेविंग्स भी बिग होनी चाहिए बिकॉज लुलु बिग 5 days डील्स आर हियर. 31st August तक ग्रैब बिग डील्स ऑन फ्रेश फूड्स, ग्रोसरीज, होम अप्लायंसेस, मोबाइल्स, लैपटॉप, टीवीज, फैशन और एवरीडे एसेंशियल्स. और ऑनलाइन शॉपिंग का बोनस भी 89 रियाल से ऊपर के ऑर्डर्स पर फ्री होम डिलीवरी. तो देर किस बात की, 5 days बिग डील्स बिग सेविंग्स. विजिट लुलु हाइपरमार्केट या शॉप ऑनलाइन एट luluhypermarket.com. लुलु बिग 5 days डील्स. मिस किया तो डील गई. रोहन कितनी बार बोला है खाना खाने से पहले हैंड वॉश करना है, कैसे समझाओ इस लड़के को.
2: सुबह शाम बस यही टेंशन. बच्चों को लेक्चर नहीं, हम देंगे फुल ऑन फन. बिकॉज रियादा मेडिकल सेंटर और ऑलिव सुनो रेडियो नेटवर्क लेकर आए हैं बैक टू स्कूल जूनियर केयर क्लब,
1: जहां बच्चे खेलेंगे रियल लाइफ गेम्स और सीखेंगे हेल्थ एंड हाइजीन की इम्पोर्टेंस एकदम मजेदार तरीके से.
2: तो इस 4 सितंबर को अपने 7 से 10 साल के लिटिल चैंपियंस को लेकर आओ रियादा मेडिकल सेंटर पर
1: सुबह 9 बजे एंड लेट देम प्ले, लर्न एंड बिकम अल्टीमेट हेल्थ एंड हाइजीन सुपर हीरोज.
2: टू रजिस्टर व्हाट्सएप OR स्पेस आपका नाम 3311063 पर.
1: Brought to you by Riyadha Medical Center.
3: JCI Accredited Riyadha Medical Center. Har din aapki seva mein karyarat hai.
4: Visit Riyadha Medical Center on Searing Road, Doha.
1: Hygiene and wellness partner, Johnson's. 99.9% germ removal now with micellar technology. Listerine. 5x more clean.

स्पोर्ट्स लवर, आज ये जो बात है ये थोड़ी स्पेशल है। दोहा में चल रहा है FIVB बॉयज अंडर 17 वर्ल्ड चैंपियनशिप 2026 जो 29th ऑफ अगस्त तक हो रहा है। मतलब दुनिया भर के यंग वॉलीबॉल प्लेयर्स इस वक्त दोहा में हैं। टुडे इज ऑलरेडी 28th, राइट? और इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि आज जो लड़का कोर्ट पर 16-17 साल की एज में खेल रहा है, हो सकता है कि कुछ साल के बाद हम उसको किसी वर्ल्ड चैंपियनशिप या ओलंपिक्स में देख रहे हो। सो स्पोर्ट्स की ना ब्यूटी यही है, आप कभी कभी सुपरस्टार बनने से पहले सुपरस्टार को देख लेते हो। और कतर में ये मैचेस देखने का मौका भी है विद फ्री एंट्री। सो आप, मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आपका वीकेंड थोड़ा स्पोर्टिंग बनाना चाहते हो आप, तो 29th ऑफ अगस्त यानी कि कल तक ये चैंपियनशिप चेकआउट कर सकते हो। और एक सवाल है मेरा आपसे, अगर आपको एक स्पोर्ट चूज करना हो जो आपके बच्चे को प्रोफेशनली आप सिखाना चाहते हैं, तो वो क्या होगा? फुटबॉल, क्रिकेट, बास्केटबॉल या वॉलीबॉल? बाय द वे, फुटबॉल का क्रेज तो हम सब ने देखा है यहाँ पे। चाहे आप अपने बच्चों के लिए कुछ सोचे ना सोचे, आप ये तो सोचते हो कि यार उनको फुटबॉल क्लब में भेज के एक बार सिखाते हैं। सो यू टेल मी कि आपके लिए सबसे बेस्ट यू नो स्पोर्ट्स क्या है। 3311106 इज माई नंबर। यू आर लिसनिंग रेडियो ऑलिव और ये है हैप्पी वीकेंड्स।

0: हैप्पीनेस फ्री में बट रही है, जितनी चाहो उतनी बटोर लो, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास।
1: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द ईयर।

0: आपकी एक छोटी सी मुस्कुराहट किसी का दिन बना सकती है. सो स्प्रेड द हैप्पीनेस,
1: क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस. रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी. जियो बिंदास.
2: की शॉपिंग का तरीका अब बदलने वाला है.
3: जीसीसी का पॉपुलर नेस्टो हाइपरमार्केट अब फाइनली आ गया है कतर में विद अनबिलीवेबल इनॉग्रल ऑफर्स.
2: और अब पार्किंग की भी नो टेंशन.
3: कतर्स फर्स्ट नेस्टो हाइपरमार्केट, ओल्ड पासपोर्ट ऑफिस, गराफा.
2: द वेट इज फाइनली ओवर. बी

सो वीकेंड का मतलब सिर्फ शॉपिंग, डिनर और मूवीज नहीं होता, कभी कभी वीकेंड का एक छोटा सा गुड डीड भी पूरे मूड को पूरा चेंज कर देता है। मिनिस्ट्री ऑफ म्यूनिसिपैलिटी का बीचेस एंड आइलैंड क्लीनिंग कैंपेन चल रहा है और इसका नेक्स्ट क्लीनअप यानी कि कल 29 अगस्त को होने वाला है सुबह 7 बजे से 9 बजे तक। सो पार्टिसिपेशन जो है वो एकदम फ्री है, रजिस्ट्रेशन इसके लिए रिक्वायर्ड है। अब इमेजिन कीजिए कल सैटरडे मॉर्निंग समुंदर और थोड़ी सी फ्रेश हवा और आप बीच पर सेल्फी लेने की बजाय बीच को क्लीन कर रहे हो। मुझे लगता है कि बच्चों के साथ ये और भी ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस हो जाता है क्योंकि बच्चों को लेक्चर देना कि बेटा एनवायरनमेंट को क्लीन रखो, उससे बेटर है कि उन्हें ये एक्सपीरियंस करवाया जाए। सो उससे बेटर है कि बच्चों को आप लेकर जाइए, एक बैग उठाइए और खुद क्लीन कीजिए क्योंकि चिल्ड्रन कॉपी व्हाट वी डू, नॉट ऑलवेज व्हाट वी से। और बोलते तो हम वैसे बहुत सारी चीज़ें हैं लेकिन बच्चों को दिखाना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस वीक का चैलेंज है कि एक सेल्फी कम और एक अच्छा काम ज़्यादा करिए। बाय द वे मैं भी सोच रही हूँ कल जाने के बारे में, आप मुझे बताइए कि आपका इस वीकेंड क्या क्या प्लान है। फ्राइडे इज ऑलमोस्ट इवनिंग हो चुकी है, सैटरडे इज स्टिल देयर। सो आप मुझे बताइए 3311063 पर। यू आर लिसनिंग रेडियो ऑलिव, स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास।

कतर में गर्मी ने हम सबको ना एक बात तो सिखा दी है, आउटडोर प्लान बनाने से पहले टेम्परेचर चेक करो। लेकिन रनर्स के लिए सॉल्यूशन मिल गया है, रन द डोम 2026, जो कि कल और आज हो रहा है एस्पायर डोम में। और भाई रनिंग भी नॉर्मल नहीं, मतलब इंडोर क्लाइमेट कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में। और आई वाज थिंकिंग कि अगर आपने रजिस्टर किया है तो आप तो आई एम श्योर तैयारी कर रहे होगे। और रेस का जो ट्रैक है वो अराउंड 4.8 किलोमीटर्स का है, विच इज़ लाइक अराउंड 5 किलोमीटर। तो इतना तो मतलब ऐसा लगता है कि हफ्ते में एक बार अगर आपने ऐसा कर लिया ना, दो तीन दिन आपका मूड बहुत बढ़िया रहने वाला है। सो आई वाज थिंकिंग कि ऑनेस्टली रनिंग का सबसे इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है, आप किसी और से कम्पीट कर रहे हो, लेकिन असली कॉम्पिटिशन होता है आप और आपके कल वाले वर्जन से। सो आप मुझे बताइए, आप 4.8 किलोमीटर भाग सकते हो, 400 मीटर में ही आप बोल दोगे कि मुझे पानी चाहिए। बाय द वे स्टार्टिंग में मेरे साथ भी ऐसे ही होता था, जब मैं एक्सरसाइज करने या वॉक करने या जॉग करने या रनिंग करने के लिए जाती थी तो मुझे सबसे ज़्यादा बोरिंग काम यही लगता था, ऐसा लगता था बहुत बोर हो रहे। पर फिर मैंने अलग अलग तरीके निकाले, अच्छे से एक हेडफोन्स खरीदे एंड देन विद म्यूजिक आपको इतना मज़ा आएगा कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि 5 किलोमीटर या फिर यू नो एक घंटा कब निकल गया, और यू विल एंजॉय। सो आई विल से कि नेक्स्ट टाइम आप भी ज़रूर रजिस्टर कीजिएगा। नंबर इज 3311063। आप मुझे बताइए कि आपने इस वीकेंड पे क्या स्पेशल किया। सुन रहे हैं आप रेडियो ऑलिव, स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास।

0: भागे तेरे पीछे, बावरा समन, बावरा समन।
1: कभी खुद के कंधे पर हाथ रखकर कहा है कि क्या काम किया छोटे तूने? जनाब, खुद से हैप्पी रहोगे तभी तो हैप्पीनेस फैलाओगे, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास।
2: सुनो सुनो सुनो, आपकी शॉपिंग का तरीका अब बदलने वाला है।
3: जीसीसी का पॉपुलर नेस्टो हाइपरमार्केट अब फाइनली आ गया है कतर में, विद अनबिलीवेबल इनॉग्रल ऑफर्स।
2: और अब पार्किंग की भी नो टेंशन।
3: कतर्स फर्स्ट नेस्टो हाइपरमार्केट, ओल्ड पासपोर्ट ऑफिस, गराफा।
2: द वेट इज फाइनली ओवर।

अच्छा अब एक थोड़ा सा खतरनाक सवाल पूछते हो। आप शॉपिंग लिस्ट लेकर जाते हो, और अगर जाते हो तो क्या आप उस लिस्ट के साथ ही वापस आते हो? दोहा ट्रेड फेयर 2026 चल रहा है, जो कि ऑलरेडी लास्ट वीक स्टार्ट हो गया था और 4th ऑफ सितंबर तक चलने वाला है DECC में। अब टाइमिंग है सुबह 10 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक, और मुझे लगता है कि ट्रेड फेयर का असली एडवेंचर शॉपिंग नहीं, सेल्फ कंट्रोल है। आप अंदर जाते हो बस एक चीज लेने के लिए, फिर एक स्टॉल, और मतलब ये तो यूजफुल है, दूसरा स्टॉल, ये तो घर में होना ही चाहिए, फिर तीसरा पता नहीं क्या है बट क्यूट है, ले लेते हैं, और घर पहुंचकर ये मैंने क्या खरीदा है, ये सब आपको महसूस होने लगता है। तो आप मुझे बताइए आपकी लाइफ की सबसे यूजलेस शॉपिंग क्या है, जो यू नो फिर भी आपको बहुत पसंद है और आपको लगता है कि नहीं यार, एक ट्रेड फेयर लगा था, 10 दिन की बात थी, बाद में ये चीज़ पता नहीं कहाँ मिलती नहीं मिलती, सो इसीलिए खरीद लिया, और ऐसे करते करते घर में पता नहीं कितना सामान हो जाता है। सो यू टेल मी योर वेस्ट वाली शॉपिंग, जो आपको लगता है कि यूजलेस है ये। 3311063 इज माई नंबर। बाय द वे कल सैटरडे, चाहो तो DECC जा सकते हो सुबह 10 से रात के 10 बजे तक, कभी भी। सुन रहे हैं आप रेडियो ऑलिव, स्टे ट्यून, ये है हैप्पी वीकेंड्स।

गानों के साथ या हैप्पीनेस बढ़ रही है, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी। जियो बिंदास। रेडियो

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: जब भी मैं किसी कार के बारे में बात करती हूँ तो मुझे लगता है कि मुझे तो कभी इंटरेस्ट था ही नहीं, लेकिन अगर मैं अपने भाई की बात करूँ या अपने फादर की बात करूँ तो कार के बारे में बात करना मतलब किसी कहानी के बारे में बात करना। कुछ लोगों की आंखों में ना अलग ही चमक आ जाती है व्हेन यू टॉक अबाउट कार्स, क्योंकि कार सिर्फ कार नहीं होती। किसी के लिए फर्स्ट सैलरी की कार, किसी के लिए फैमिली रोड ट्रिप, किसी के लिए कॉलेज की यादें और किसी के लिए पहले ट्रैफिक फाइन। कतर में स्नीक पीक एट द कतर ऑटो म्यूजियम प्रोजेक्ट का डिस्प्ले जो है वो चल रहा है नेशनल म्यूजियम ऑफ कतर में, और ये 2 फरवरी 2027 तक लिस्टेड है। तो अगर आप कार लवर हो या इंटरेस्टिंग वीकेंड स्टॉप हो सकता है आपके लिए, लेकिन आज मेरा सवाल कार लवर से नहीं सबसे है, आपकी लाइफ की सबसे मेमोरेबल कार कौन सी थी, चाहे वो मर्सिडीज हो या पापा की ओल्ड मारुति। यू नो, कार पुरानी हो सकती है लेकिन यादें नहीं। हर किसी की लाइफ की एक वो पहली गाड़ी है जो आपको बहुत याद रहती है, और कोई ऐसी स्पेशल गाड़ी जो आपको लगता है कि यार ये तो मैंने लाखों किलोमीटर्स चलाई थी। 3311106 इज माई नंबर, यू आर लिसनिंग रेडियो ऑलिव, और ये है हैप्पी वीकेंड्स।

0: हैप्पीनेस बांटोगे तभी तो बढ़ेगी,
1: क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी। जियो बिंदास।

0: हैप्पीनेस बांटोगे तभी तो बढ़ेगी,
1: क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी। जियो बिंदास।

So, आज सुबह हमने चांद देखा था और अब चलिए थोड़ा सा स्टार्स की तरफ. म्यूजियम ऑफ इस्लामिक आर्ट की लाइब्रेरी में चल रहा है द एस्ट्रोलैब टेकर ऑफ द स्टार्स, यानी डिस्प्ले जो कि 31 अगस्त तक होने वाला है. अब एस्ट्रोलैब सुनने में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगता है, लेकिन सिंपल लैंग्वेज में सोचिए. आज हम बोलते हैं कि गूगल मैप्स खोल लो, सारे रास्ते हमें वही बताता है. लेकिन पुराने ज़माने में जब लोग आसमान को देख कर डायरेक्शन और पोजिशन समझते थे, स्टार्स उनके मैप हुआ करते थे. और मुझे ये थाट पुराने चीज़ों के बारे में बहुत ब्यूटिफुल लगता है. हमारी जनरेशन GPS के बिना इतनी कन्फ्यूज़ हो जाती है कि वो शायद घर से बाहर निकल ही नहीं सकती. और मुझे तो आज तक अपने घर का एड्रेस ऐसे पूरा याद भी नहीं है. जब मैं ऑफिस से अपने घर की तरफ जाती हूँ, विला की तरफ जाती हूँ, तो बस वो जो कैब वाली जो एप्लीकेशंस होती हैं उनमें अपना एड्रेस फिल कर दिया और हो गया काम. मुझे कुछ नहीं पता. सो सेंचुरीज पहले लोग स्टार्स देखकर रास्ते समझ जाते थे. और इस वीकेंड आई विल से कि आप थोड़ा सा हिस्ट्री, साइंस और आर्ट को एक साथ एक्सपीरियंस कीजिए, स्पेशली इफ़ यू हैव किड विद यू, और उनको भी एक्सपीरियंस करवाइए. और सवाल यह है कि फ़ोन और GPS दोनों बंद हो जाएं तो क्या आप घर का रास्ता ढूंढ पाओगे? 3311063 इज माई नंबर. यू आर लिस्निंग रेडियो ऑलिव. मैं हूँ मुस्कान. स्टे ट्यून्ड. जियो बिंदास.

0: समर वेकेशन का सबसे बड़ा झूठ पता है क्या है कि अभी तो बहुत टाइम है, स्कूल तो दूर है। फिर सडनली क्या होता है, स्कूल बैग्स निकल आते हैं। कतर में समर ब्रेक के बाद स्कूल्स के रीओपन होने का टाइम हो गया है और घर में दो इमोशंस चल रहे हैं। पेरेंट्स जो है वो कह रहे हैं फाइनली बच्चे अब स्कूल जाएंगे, उनको अपना टाइम मिलेगा, और बच्चे कह रहे हैं कि इतना जल्दी समर खत्म कैसे हो गया। लेकिन ऑनेस्टली स्कूल सिर्फ किताबें और होमवर्क नहीं है, बच्चे रूटीन सीखते हैं, फ्रेंड्स बनाते हैं, कॉम्पिटिशन सीखते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट अपने कम्फर्ट जोन से बाहर जाते हैं और सीखते हैं कि कैसे यू नो लाइफ को जीना है। तो पेरेंट्स स्कूल शुरू होने से पहले एक काम जरूर कीजिए, बच्चों से पूछिए कि इस साल तुम क्या नया सीखना चाहते हो, उनका क्या टारगेट है बाय द वे इस साल। सुन रहे हैं आप रेडियो ऑल 106.3 FM, दिस इज मी मुस्कान विद योर शो का नाम है हैप्पी वीकेंड्स। बाय द वे मेरे जब स्कूल खुल जाते थे तो मुझे बहुत खुशी होती थी क्योंकि बहुत सारी नई नई चीजें मिला करती थी। हम जब दो महीने की छुट्टी के बाद स्कूल जाते थे, चाहे वो नया बैग हो, यू नो नए टिफिन बॉक्सेस हो, बॉटल हो, एवरीथिंग वॉज न्यू। सो हर बार एक नया एक्साइटमेंट होता था। सो स्कूल रीओपन होने पर आपके घर में ज्यादा खुशी होती है या मम्मी पापा को या फिर बच्चों को ज्यादा खुशी होती है? कौन ज्यादा खुश रहता है स्कूल ओपन होने के बाद, बताइए मुझे 3311063 पर। यू आर लिसनिंग रेडियो ऑलिव और ये है हैप्पी वीकेंड।
1: यू आर लिसनिंग टू रेडियो ऑलिव 106.3 FM, जियो बिंदास।

हैप्पीनेस फ्री में बट रही है, जितनी चाहो उतनी बटोर लो, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास। टफ काम और भी आसान, कार्मल ग्रुप लाया है शैंटुई के व्हील लोडर्स, एक्सकेवेटर्स और बुलडोजर्स। मजबूती ऐसी जो हर चैलेंज जीत ले। विजिट कार्मल ग्रुप नाउ।

0: सो आई हैव अ चैलेंज फॉर यू, हैप्पी वीकेंड का एक छोटा सा चैलेंज. सुन रहे हैं आप रेडियो ऑलिव 106.3 FM, मैं हूं मुस्कान और ये है रेडियो ऑलिव पर सुपर हिट गानों के साथ हैप्पी वीकेंड्स. सिर्फ एक घंटे के लिए आज फोन साइड में रखिए, नो इंस्टाग्राम, नो व्हाट्सएप, नो रील्स, नो रैंडम स्क्रॉलिंग, और बस एक घंटा कॉफी पीजिए, आराम से फैमिली के साथ टाइम बिताइए, म्यूजिक सुनिए, किताबें पढ़िए या कुछ मत कीजिए. और इंटरेस्टिंग बात यह है कि हम फोन के बिना बोर नहीं होते, हम खुद के साथ रहना भूल सा गए हैं. यू वॉन्ट बिलीव कि कुछ टाइम के लिए मैंने ये आदत शुरू की थी और मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं कितना ज़्यादा फ़ोन चलाती हूँ, जबकि मुझे फ़ोन चलाने की ज़रूरत नहीं है. मुझे ना कुछ देखना होता है, ना कोई नोटिफिकेशन होता है. मैंने तो सारे नोटिफिकेशंस भी ऑफ किए होते हैं, पर बार बार यू नो ये अल्गोरिदम आपको वहीं लेके चला जाता है. सो टेक्निकली चैलेंज अभी से आपको करना है, और व्हेनेवर यू फील कि यार आज रात को एक घंटे फ़ोन फ्री रहेंगे, ट्राई कीजिए. फ्राइडे भी है, थोड़ा यू नो ऑफिस का काम भी नहीं होगा, और एक घंटे नोटिफिकेशंस को बिल्कुल इग्नोर कर दीजिए. मे बी आपको कोई पुरानी कॉन्वर्सेशन याद आ जाए, कोई फैमिली के साथ फनी बात याद आ जाए, या मे बी आपको खुद के साथ थोड़ा टाइम मिल जाए. इंजॉय कीजिए इस एक घंटे के टाइम को और बताइएगा जरूर कि रिजल्ट कैसा रहा. 3311063 इज माय नंबर. यू आर लिस्निंग रेडियो ऑलिव और मैं हूं मुस्कान आपके साथ. स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास.
1: आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन, रेडियो ऑलिव 106.3 FM.

0: आपकी एक छोटी सी मुस्कुराहट किसी का दिन बना सकती है. सो स्प्रेड द हैप्पीनेस, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस. रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी. जियो बिंदास.
1: की शॉपिंग का तरीका अब बदलने वाला है.
2: जीसीसी का पॉपुलर नेस्टो हाइपरमार्केट अब फाइनली आ गया है कतर में विद अनबिलीवेबल इनॉग्रल ऑफर्स.
1: और अब पार्किंग की भी नो टेंशन.
2: कतर्स फर्स्ट नेस्टो हाइपरमार्केट, ओल्ड पासपोर्ट ऑफिस, गराफा.
1: द वेट इज फाइनली ओवर.

0: अजीब सी कॉन्स्पिरेसी है हमारी लाइफ की, ठीक है। संडे को जब हमारा नया वीक स्टार्ट होता है उससे लेके थर्सडे की इवनिंग तक ऐसा लगता है जैसे पैरों में ना वजन बंधा हुआ हो, और फिर थर्सडे की इवनिंग के बाद लगता है वो अब मतलब सीधे सैटरडे नाइट तक आप फ्री हो। कभी सोचा ऐसा क्यों लगता है कि वीकेंड हमेशा छोटा होता है? साइकोलॉजी में एक इंटरेस्टिंग आइडिया है, टाइम परसेप्शन। जब हम रूटीन में होते हैं डेज एक जैसे लगते हैं, लेकिन जब हम कुछ इंजॉयबल या मेमोरेबल करते हैं तो ब्रेन उस मोमेंट को डेफिनेटली प्रोसेस करता है। लेकिन कभी कभी पूरा वीकेंड बहुत जल्दी निकल जाता है। सो एक इंटरेस्टिंग ट्रिक है, वीकेंड को सिर्फ नेटफ्लिक्स, स्क्रॉलिंग या स्लीपिंग में डिवाइड कीजिए। एक नई जगह जाइए, कुछ नया यू नो ट्राई कीजिए, खाइए, किसी पुराने दोस्त को कॉल कर लीजिए, या बस किसी एक ऐसे काम के लिए थोड़ा सा टाइम निकालिए जो आप नॉर्मली नहीं करते, चाहे वो एक्सरसाइज हो या फिर घर को मैनेज करना हो या डीक्लटर करना हो या व्हाटएवर। क्योंकि शायद लोग ना लॉन्ग वीकेंड का सीक्रेट जो है वो आर्स नहीं एक्स्ट्रा मेमोरीज में है। और अब मुझे लगता है कि हैप्पी वीकेंड का सवाल भी यही है कि आपका परफेक्ट फ्राइडे क्या है? घर का खाना प्लस फैमिली, फ्रेंड्स के साथ आउटिंग, या फिर नेटफ्लिक्स और फोन? सो बताइएगा जरूर। और प्लीज संडे से पहले मतलब ये जो अटेंडेंस है ये लगा दीजिएगा इस काम के लिए। बाय द वे, यू आर लिसनिंग रेडियो ऑल 106.3 FM, मैं हूँ मुस्कान और ये है हैप्पी वीकेंड्स।
1: सिर्फ नंबर वन लोग सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ऑलिव 106.3 FM।

0: खुद के कंधे पर हाथ रखकर कहा है कि क्या काम किया छोटे तूने। जनाब, खुद से हैप्पी रहोगे तभी तो हैप्पीनेस फैलाओगे, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास।
1: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर।
2: क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है।
3: Cool song.

0: गानों के साथ या हैप्पीनेस बढ़ रही है, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी। जियो बिंदास।
1: Fresh fish on the grill, slow-cooked mandi, perfectly spiced prawns, and that special chutney. No noise, no drama, just seafood done right. BBQ fish, crabs, prawns, crafted with patience, served with pride. Dana Dal Bahar, the ultimate Qatari adventure. Souq Waqif, Al Khor.
2: Ab suniye, Olive ka Zabardast Hit.

आज के हैप्पी वीकेंड का लास्ट क्वेश्चन है। आज मैं आपको एक इमेजिनरी फ्राइडे देने वाली हूँ। यू आर लिसनिंग रेडियो ऑल ओवर 106.3 एफएम। मैं हूँ मुस्कान और शो का नाम है यस ऑफ कोर्स हैप्पी वीकेंड्स। भाई कल शाम से लेके आज तक बहुत सारी नई नई चीजें मैंने ट्राई की हैं आपके सामने। मैं आपको बोलती हूँ कि 5 ऑप्शंस हैं, फूड, फैमिली, फ्रेंड्स, मूवी और स्लीप। लेकिन ट्विस्ट ये है कि सिर्फ 3 चूज कर सकते हो, फूड प्लस मूवी प्लस स्लीप। और क्लियरली आप बोल रहे हो कि मुझे किसी इंसान की जरूरत ही नहीं है। और अगर आप चूज कर रहे हो फ्रेंड्स प्लस फूड प्लस आउटिंग, तो आप वो हो जिनका वीकेंड मतलब संडे से ही पहले ही स्टार्ट हो जाता है कि अब इस वीकेंड क्या करेंगे। और कुछ लोग हैं फैमिली प्लस फूड प्लस मूवी वाले, सो उनका है क्लासिक फ्राइडे। और अगर आपने स्लीप को चूज किया है, आई रिस्पेक्ट यू, बिकॉज आफ्टर 1 full week ऑफ लाइफ sometimes the most luxurious weekend plan is simply doing nothing. So I will say कि अगर कल का पूरा दिन आपके control में हो तो आप सुबह से रात तक क्या करना पसंद करोगे। By the way कल Saturday है, बहुत सारे लोगों का weekend ही होता है, बहुत सारे लोगों का half day होता है और कुछ लोगों के लिए full off होता है। So message करो, call करो, share करो और बताओ मुझे आपका happy weekend का क्या plan है। और happy weekend is not just a show, weekend का mood है यहाँ पे। So अभी super hit गाने के साथ आपको छोड़ के जा रही हूँ। मिलेंगे कल सेम टाइम सेम जगह, यानी कि रात को मिडनाइट लाउंज में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड स्टे ट्यून्ड। जियो बिंदास।

0: This is Club Olive.
1: की शॉपिंग का तरीका अब बदलने वाला है।
2: GCC का पॉपुलर नेस्टो हाइपरमार्केट अब फाइनली आ गया है कतर में विद अनबिलीवेबल इनॉग्रल ऑफर्स।
1: और अब पार्किंग की भी नो टेंशन।
2: कतर्स फर्स्ट नेस्टो हाइपरमार्केट, ओल्ड पासपोर्ट ऑफिस, गराफा।
1: द वेट इज फाइनली ओवर। बी रेडी।

0: सुनो सुनो, आपकी शॉपिंग का तरीका अब बदलने वाला है।
1: जीसीसी का पॉपुलर नेस्टो हाइपरमार्केट अब फाइनली आ गया है कतर में विद अनबिलीवेबल इनॉग्रल ऑफर्स।
0: और अब पार्किंग की भी नो टेंशन।
1: कतर्स फर्स्ट नेस्टो हाइपरमार्केट, ओल्ड पासपोर्ट ऑफिस, गराफा।
0: द वेट इज फाइनली ओवर, बी रेडी टू शॉप।
2: More music variety.

एंटरटेनमेंट की या कोई सीमा नहीं, बनाइए अपने मॉर्निंग को बिंदास मॉर्निंग। हर सुबह 6 से 10 ओनली ऑन रेडियो ऑलिव 106.3 FM जियो बिंदास।

0: तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त कतर की नंबर वन आरजे आरजे सिमरन के साथ जबरदस्त इवनिंग रोज शाम 5 से 9 ओनली ऑन 106.3 रेडियो ऑलिव जियो बिंदास
1: आरजे सिमरन के साथ
2: Right here. Club Olive 106.3.

0: पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।
1: आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन, रेडियो ओलिव 106.3।

Club Olive on Radio Olive. Radio Olive 106.3 FM. You're listening to

सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।

आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 एफएम। बिंदास। अब सुनिए ओलिव का जबरदस्त है।

सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।

आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।